0: आज किसी से हो गया हमको, आज किसी से हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज पपीते हो गई आंखें, आज पपीते हो गई आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: खेले पहली ही बाजी न गए हम, पहली ही बाजी न गए हम।
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा, हार हार हार ओ राजा, हार हार हार। आज किसी पे हो गई आंखें, आज किसी पे हो गई आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। डीराटा डीरा

राजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

मेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला का दिला।

मरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत पिचकी जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत पिचकी जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बित की जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दिलाता

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत किसकी किसकी जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत किसकी किसकी जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला का दिला का जो जो

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

ना आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया।

कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हित हित हित की आए, तबीयत बिचकी बिचकी जाए, दिला का दिला।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला ता दिला ता जो जो जो जो दिला दिला ता दिला ता जो

0: नबाज आई बेदाद करते करते चौखट पे आ गया हूँ फरियाद करते करते पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले पाजा
1: पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले पाजा
0: अजमेर वाले पाजा।

दम अगर तुझ सा न पाया कोई, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे,

0: फिर जो होगा कल ही देखा जाएगा। अरे जीने वालों ले लो जीने का मजा।
1: कल जो होगा कल ही देखा जाएगा। जीने वालों

जमाना है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना मेरे पीछे, बड़ा है जमाना है बड़ा मुश्किल है।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या करे

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर?

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले दी जरा हाल सुनो। किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो।